0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो ईबीबी काय और रेडियो के कैन
2: लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स ट्रेडिशनल मैन नियो केलो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनो और रेडियो
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओबेरुमो अपो कोई चुनवा उइन्ये उइन्ये

0: मैं पाचू
1: इटीविन्यो और रेडियो
2: अबुनी बाता
3: आ अबिनु कांपिया वो भी मरनी है ने अमे वेर वॉके अबुमिनो वेर वेर को अमे उन्होंने रागवा
2: रागवा

0: और मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो
2: Ladies and gentlemen, it's traditional, man. Neo Kello.